0: क्यूआर संगे
1: नेपाल पे क्यूआर में आवत हुई क्लॉक आज अपन बैंक वित्तीय संस्था चाहे वॉलेट में संपर्क करी मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस ओ इंटरनेशनल पेमेंट ऐप मन से नेपाल पे क्यूआर में सहजिल से भुगतानी पाए नेपाल पे क्यूआर नेपाल के अपने क्यूआर
2: के तपाईमा मनमा अनावश्यक कुरा खेल्ने रातिमा निन्द्रा नपर्ने नकारात्मक सोच धेरै आउने आत्महत्या गर्न मन लाग्ने टाउको दुखी रहने मन आत्तिने छारे रोग कुलतले अप्ठ्यारो पारेको यौन इच्छा नहुनु यौन दुर्बलता वा शीघ्र स्खलन जस्ता समस्या छन्
3: यदि छन् भने वीरेन्द्रनगर 3 एलचोकदेखि 200 मिटर उत्तरतर्फ रहेको राणा हस्पिटलमा यही जेठ 2 गते पहिलो शनिबारका दिन नशा तथा मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर मोहम्मद एनिदुन बागवान आउनुहुने भएकाले सशुल्क सेवा लिनुहुन अनुरोध साथै बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर महेश चौलागाद्वारा पनि सेवा दिइरहेको जानकारी गराउँदछौ
4: सम्पर्क राणा हस्पिटल प्राइभेट लिमिटेड वीरेन्द्रनगर एरीचोकदेखि 200 मिटर उत्तरतर्फ सुर्खेत फोन नम्बर 083-590-693

0: Mario.
1: Extreme energy drink.
2: आइपुग्यो आधुनिक जोत्ने हलो मिनी टिलर थ्रेसर पानी ताने फर्म पावर टिलर सोलर पम्प कम्पाउन्ड मिल घाँस काट्ने मेसिन कृषि औजार उपकरणका साथै बिक्री पछि मर्मत सेवा पनि उपलब्ध छ। सम्पर्क मानिकेज मार्केटिङ बिजनेस सर्भिस प्रणाली वृन्दनगर सुर्खेत। फोन नम्बर 083-520-045।
3: रेडियो भेरी एफएम

0: रुपए क्यू बार में आवत हुई क्लर्क आज अपन बैंक वित्तीय संस्था चाहे वॉलेट में संपर्क करी। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस ओ इंटरनेशनल पेमेंट ऐप मन से नेपाल पे क्यू आर में सहजील से भुगतानी पाए। नेपाल पे क्यू आर नेपाल के अपने क्यू आर।
1: कर्मचारी आवश्यकता संबंधी सूचना एस स्मार्ट कृषि तथा पशुपक्षी फर्म नवबुद्ध पाँच काप्रे पलाञ्चोकमा केही कर्मचारीको आवश्यकता परेको हुँदा इच्छुक महानुभावहरूलाई समयमै सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौ। पद संख्या दुई जना, योग्यता सामान्य लेखपढ गर्न जान्ने, मासिक तलब रु 25,000 सँगै बोनसको व्यवस्था, खाने बस्ने र स्वास्थ्य बीमा सँगै पेन्सनको समेत सुविधा भएको,
2: परिवार सहित सम्पर्कमा आउनेलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ।
1: सम्पर्क स्मार्ट कृषि तथा पशुपक्षी फर्म नवबुद्ध पाँच काप्रे पलाञ्चोक। मोबाइल नम्बर 98411093909 98411093909।

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 व्यक्ति 2.7 मेगाहर्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: धन्यवाद है तो काली का कौन आया सर आया ना मेरे मेरे दोनों धन्यवाद काली के सलाम का कहीं का लड़ने का जरूर धन्यवाद दिले काली का माँ वही दोनों जरूर कुछ वही बंदा पत्थरी सिंगार गांव काली का तो मयूर ना प्रसिद्ध है चलाई तैयारी अवस्था में रहती है ना कलाई मार का तभी तो मन से ना आ रहे तैयारी अवस्था में प्रसिद्ध है कलाई बिल्कुल चांस है रस्ते में पहला मन का तैयारी भी छोटे वाली ना लगे मैंने आदमी अभी भी वाला मेरे को चाहिए वो बड़े स्कूल संग और का तरह का छोटे मन का राज्य में ना कलाई ना एक बड़ी संग आदत है आ
1: धन्यवाद आदरणीय सर सत्रों जिला स्तरीय राष्ट्रपति द्वारा स्कूल पढ़ते हिता का सभाध्यक्ष तथा प्रेरणा नगर पालिका का आदरणीय नगर प्रमुख जीव इस कार्यक्रम का प्रमुख अतिथि कर्णाली प्रदेश सरकार का माननीय मुख्यमंत्री श्यामल सोरेन जीव विशिष्ट अतिथि सामाजिक विकास मंत्री जीव जिल्ला समन्वय का प्रमुख जीव र सबै पालिकाबाट पाल्नु भएका प्रमुख उपप्रमुख जीव सबै पालिका आदरणीय नगर प्रमुख जीव यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कर्णाली प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री श्यामल सोरेन जीव विशिष्ट

मैं विश्वास राष्ट्रीय विनायक रमेश कुमार तुलाधर स्वतः जिला स्तरीय राष्ट्रपति रंग की खेलकूद प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद को नियम को पालना करते संपूर्ण विनय धर्म तरफ निष्पक्ष रूप में खेल खेलाने शपथ ग्रहण करदु। धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय रमेश कुमार तुलाधरजी। यद्यपि खिलाड़ी आज का स्थानीय तह का सब खिलाड़ियों को तर्फब शपथ खाने का लगी वृंदावन नगरपालिक को तरफ करने श्रम भावना प्रस्तुत मंच में शपथ ग्रहण का निमंत्रण करना प्रस्तुत।

0: मर्यादित शांत अनुशासित नमूना भर संपन्न होने हमी पूर्ण रूप में आशा राखी इसमें सब खेलकूदी महानुभाव सहयोग समन्वय और सहकार को हमी अपेक्षा कर आज को यह सत्र राष्ट्रपति जीवनस्तरीय राष्ट्रपति धनुश्री प्रतियोगिता को उद्घाटन सत्र को समापन करने हम कार्यक्रम रहे तेस पच्चीस हमी पन्न सैनिक चौर को हम खेल उद्घाटन करने उद्घाटन सत्र शुभकामना सहित समापन कर दिन का आयोजक नगरपालिक ग्रुण नगर का आदरणीय नगर प्रमुख तथा इस कार्यक्रम का अध्यक्ष आदरणीय मोहन नाय ढकालजी मार्दिक अनुरोध मैं उदाहरण से इस प्रतिकोत्ता हमी हमारा उद्घाटन कार्यक्रम समापन जानकारी कराने
1: प्रत्येक जिला स्तरीय राष्ट्रपति रामजी प्रतियोगिता कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि को रूप में आसन ग्रहण करहुने कर्णाली प्रदेश सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष अतिथि कर्णाली प्रदेश सरकार का माननीय सामाजिक विकास मंत्री जी कार्यक्रम में अतिथि आसन ग्रहण करहुने

0: कसैलाई पनि छिट्टै विश्वास नगर्नुहोस् है।
1: कर्णाली प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत।
2: रेडियो भेरी एफएम

0: नेपाल पे क्यूबार में आबद हुई क्लग आज अपन बैंक वित्तीय संस्था चाहे वॉलेट में संपर्क करी मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस ओ इंटरनेशनल पेमेंट ऐप मन से नेपाल पे क्यूआर में सहजिल से भुगतानी पाए नेपाल पे क्यूआर नेपाल के अपने क्यूआर
1: रेडियो
2: रेडियो भेरी एफएम 98.6 मेगाहर्ट्ज
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
4: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

संगे नेपाल पे क्यूआर में आवत हुई क्लॉक आज अपन बैंक वित्तीय संस्था चाहे वॉलेट में संपर्क करी मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस ओ इंटरनेशनल पेमेंट ऐप मन से नेपाल पे क्यूआर में सहजील से भुगतानी पाए नेपाल पे क्यूआर नेपाल के अपने क्यूआर

बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले जीव।

0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो
1: रेडियो भेरी एफएम

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 मेगाहर्ट्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी